लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुद नौ ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुद नौ इंदर इंदर आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुद नौ सिद्ध समाधि अंदर गावन तुद नौ साध विचारे गावन तुद नौ जति सती संतोखी गावन तुद नौ वीर करारे गावन तुद नौ पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुद नौ मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुद नौ रतन उपाए तेरे अठ साठ तीरथ नाले गावन तुद नौ जोद महाबल सूरा गावन तुद नौ खाणी चारे गावन तुद नौ खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुद नौ गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई, जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पत साहेब नानक रहन रजाई।

कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया।

काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया गुर

सुत बनता कोय न किस की तरया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया। ऊडे ऊड आवै सै कुसा तिस पाछै बचरे शरया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल साध बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। राग आस

जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तु

तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शाश्वत जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई।

जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा

साध संगत पहज केवल नाम सरंजाम लाग पग जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

हमरे दुष्ट सबै तुम कावौ, आप हाथ दै मुहे बचावौ। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप

देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, काट काट के पट पट की जान। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ।

जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताकौ कर्पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, पुत पूज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा, सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता, जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हव मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट नह आय है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक ना मानेओ।

राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां।

मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वासु कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तय सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

पार पाहे, जिनकौ लगी प्यास अमृत से खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे,

जिन्ने भी शरीर बैठे हो, 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी दे साडे जिंदगी दी रोशनी है, साडे जिंदगी नूं सवारन वास्ते इंज कह लईए पल पल निमक निमक सानूं सुचेत करन वास्ते। किते कहिंदे ने चेतना है तो चेत लै, किते कहिंदे ने क्या तू सोया जा गया। भगत तन्ना जी ने सारा कुछ ही मंग लिया, खाट मांगो चौपाई सिरहाना, शायद आपां इह चीजां ना मंगियां हों क्योंकि छोटियां छोटियां चीजां। खाट मांगो चौपाई सिरहाना और तुलाई, कहिंदे ने गां मझ भी वह दे जिहड़ी दुध वाली होवे, गऊ पैस मांगो लावेरी उहदा बच्चा भी हो, गऊ पैस मांगो लावेरी। फिर क्या कहते कहते ने घर की जीन चंगी जन तन्ना ले बंदी। धन गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी का पावन शब्द कहते ने मंगया सारा कुछ है पर पकड़ नहीं, पकड़ नाम ना है। इत्थे गल बिगड़ जाती है जो बंदा मैं मेरी विच सुत्या भी वही गल्ला रिपीट होंगी, मेरी मेरी करते जन्म गयो। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच किते नहीं लिखिया तू कारोबार ना कर, किते नहीं लिखिया तेरे कोल इक्को ही घर होवे, किते नहीं लिखिया तेरा कारोबार उच्चा ना होवे। महाराज कहिंदे ने रज रज के होवे पर पकड़ ना होवे, अटैचमेंट ना होवे, ये मेरा है। बड़ी अटल सच्चाई कहिंदे ने जन्म तो पहला भी जिस धरती ते तू दावा करके पेपर करके बैठा किसे दी सी, मौत तो बाद भी पेपर बदल जाएंगे किसे दी बन जाएगी। महाराज कहिंदे ने महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछिया कर फिर मेरा की है, सतगुरु कहणगे तेरा समा ही है, किसे नूं 80 साल किसे नूं 100 साल, रब करे लंबियां उमरां होण तुहाडियां साडियां, पर जिन्हां दी पकड़ ज्यादा होवे ना ए मेरी ए मेरी ओ मेरा ए मेरा क्यों नहीं बना। कदे भी वेख लेना जिस दी पकड़ हद तो वध होएगी ओ बंदा उन्ना ही परेशान होएगा, ओ बंदा अंदरों हिलिया होया होएगा, अपसैट होएगा। जिन्हां सवासां नूं जिस जिंदगी नूं बड़े प्रेम ते भावना नाल जीना सी उही जिंदगी कल्पना बन गई, उही जीवन तड़फना बन गई, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਨਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਚੈਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਚੈਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਘਰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨਵੇਸ਼ ਕਲੰਦਰ ਘੱਟ ਹੀ। ਦੁਨੀਆਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 68 ਤੀਰਥ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

बोलो जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार। श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंदो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याय जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौनि दावै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा प्यारियां चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वहाई देख के अणगिट कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चिरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां सिखी केसां स्वासां संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रैत देख देख फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोलवा बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाव दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पतदा रखा आप अकाल पुरख वाहेगुरु जी। हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जी श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारिया गुरुधामा जिन्हों तो पंथ नू भी छोड़िया गया तिना दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल अपने प्यारे पंथ खालसा जी नू बख्शिश करो। निमाणिया दे माण नितानिया दे तां नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी। धन गुरु नानक साहिब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन धन शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी। आप जी के पावन चरणा कमलों में अरदास बेनती है। महाराज जी अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदार दे के निहाल कर रहे हो श्यामा दे दीवाना विच सोदर रहरा साहिब जी। आरती शब्द चौंकी गुरमत विचारा

आवाज जिसका संबंध शब्द नाल है, शब्द मन का तत् है, आकाश शब्द का विषय है, नक सूंघता है जिसका संबंध गंध नाल है, गंध मन का तत् है, धरती गंध का विषय है, स्पर्श का काम छूना छूना का संबंध स्पर्श नाल है, स्पर्श मन का तत् है, पर हवा स्पर्श का विषय है। हुण इस तरह समझ आती है मेरे गुरु ने कृपा करके बख्शिश की थी। कैसी बख्शिश? एक गल मैं स्पष्ट कह दिया, मैं अपने मन को खुद समझाना होवे मैं अपने मन नाल नहीं समझा सकता। बेशक शरीर मेरे अंदर मेरा मन टिकया होया, मैं अपने मन नाल अपने मन नू नहीं वेख सकता। कारण

एक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझे हुए सचियार, तवले उपर किता पार। धरती होर परे होर होर, तिस्ते भार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता हुए। केता तान सवालिहो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता फसाओ इको कुआओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाऊ, असंख पूजा असंख तप ताऊ। संख ग्रंथ मुख वेद पाठ, संख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मो भक्सार, असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहि जोर, असंख गल वढातिया कमाई। असंख पापी पाप कर जाहि, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहि। असंख मलेच मल पख खाहि, असंख निंदक सिर करह भार। नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वखाण, जिन्हें लिखे तिस सिर नाही। जिव फरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हथ पैर तन देहे, पानी धोतै उतरस खेह। मूत पलीति कपड़ होए, देसा बूण लइए ओ धोए। भरिए मत पापां कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहु जाहो। तीर्थ तप दया तत दान, जिको पावै तिलका मान। सुनया मनया मन कीता भाउ, अंतरगत तीर्थ मल नाउ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन सिरुती माहु कवन, जित हुआ आकार। वेल न पाईया पंडती, जे हुआ लिख पुराण। वक्त न पायो कादी आजे, लिखण लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने, रुतमा हो न कोई। जा करता सिर ठीको साजी, आपे जाने सोई। किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखै, इक दू इक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै। नानक जी को आपव जाने, अगै गया न सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगासु, कूड़ कूड़ कपाल थके। वेद कैनिक वात, सैस अठारह कैनक तेबा। सुलु एक धातु, लिखा हुए त लिखी है, लिखे हुए विनाश। नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। सालाही सालाही, ती सुरत न पाईया। नदियां अतै वाह, पवै समुंद न जानिए। समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल धन। कीड़ी तुलना हुवनी, जे तिस मन हुन विसरै। अंत न सिफती कह न अंत, अंत न करण दे न अंत। अंत न वेखण सुन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। अंत कारण केते बिललाहि, ताके अंत न पाए जाहि।

पीत हैं अपीत हैं, त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है, अनिल है अनाद है अजय है आजाद है, अजन्म है अभरण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपांज है, अचूज है अचांज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है, निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाव है अजा है अनंत है महंत है, अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है, अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है उजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो वस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साह, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंगे सुनानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचदानंद सर्वं परनासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता दूर दर दंग गंगो हर्ता परम परम परमेश्वर प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्धाता देयालंग छेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोरचा त्री छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्तुं निर्णाते, नमस्तुं परमाते, नमस्तुं गंजे, नमस्तुं पंजे, नमस्तुंगा काले, नमस्तुंगा पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो महामाहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृश्यंग, नमो सर्व कृष्णंग, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चरपड चंप प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल चंत्वा प्रसाद आद रूपन आद मूरत जौन पुरख अपार सर्व मान देव अपेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत जौन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम हीन पेख ताम न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान तताहे कुमूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जाने जे वेद और कतेब रूप रंग न जात पासु जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिर चतर चक माने पुरतीन लोक चौदह के विखे जग जापी जे जाप
आद देव नाल मूरत तापियो सबै जी ताप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व सुरचियो स्वयं भव गणन भंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख अभेश अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमित अनुष्ट तेक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंग हीन भंग नाथ मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन भेद सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेक परम भेद प्राण जाकै नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित्त मद पार छंत्व प्रसाद

काल अनुकूत अंग आभा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा पर नाढ़ अंड बाढ़ चाचरी छंतु प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे कामे पुजंग प्रया चंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्मंग जाए न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृशय भगवती छंत्व प्रसाद कथते किया छिज देश किया भिज पिस किया गंज कर मैं किया भंज पर मैं किया भिज लुक किया दित सुख के अवतूत बरण के विभूत करण के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुझा है के आशोक बरण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदु अदेव है के आपु अपे वह के चित्रंग बहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफुल गुनाह है के साहन साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलिम है के परमंग फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमीसल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तुमाम है रुजुअल निदान है हरिफुल अजीम मै रजाय की यकीन है अनेकल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिवादे अगंजे अगाते शुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपांग है अनांग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद प्रसाद
सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं शरीक मितु अमीक सदैव प्रवाह जय है अजा है भगवती चंद्र प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है सुमस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करी मुल्क माल है के हुसनल जमाल है गनी मुल्क राज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहसुल निवास है कि सर्वल गवन है हमें सुलरवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीश है समस्तुल अदीश है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मदपार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हरनर प्रपंज अनगन प्रणाम मन सलाम हरनर अखंड बरनर अमंड अनपवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जलतल मुदाम अंचज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जलतल अमंड दिश्विश अपंड जलतल महंत दिश्विश बेअंत अनपवनास त्रेतर तुरास आजान बाहु विकै सुदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गात अजिज न बात अंच अंज गात अनरंज बात अंटुट भंडार अंडट अपार आडीठ कर्मु अत टीठ कर्मु अनबरन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा तप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणा कृत है अकृताकृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है जपाकृत है अमृतामृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम्पर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पवभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाचन नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे

ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो वास वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास कासु अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल लेख अपेख अनाम काम गाह अटाह अनाथि प्रमाथि अजुनी अमोनि नराग नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंग सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय विघ्ने में हरियं करियं करिमुल रहीम में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पल सुभं सर्वदा सर्वजुगते।

मन काल कात्रा सुनिवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री आसतु जु करे हो रक्षा राख ले हो मही राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे तीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाय ब्रह्मा बापतरा काल पाय शिव जीव अवतरा काल पाय कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमसा जवन काल योगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा जूठी यो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचिन उपजायो वाद अंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिनी आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पल मुँह बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जाबुद कर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ कर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब हिते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निरपकार निर्लंब आद नील नाद संब ताका मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बुद है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लका न जाय पसारा के वे सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही पूपा अंडज जीरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा शिगरी सेठ दिकाय चम पाव आद जुगाद स्वरूप सोयम पाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिति उठ तुत पाता सकल मलेश करो रन काता जी अस्त तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट डरें तत्काला कृपा दृष्ट संजाहि निहरे हो ताके ताप तनक मैं हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट चाच सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास के ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करे हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छय करता श्री अस्तुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावै सोई दुख न दिसै व्यापत कोई डेल सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावै सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवै दुख दर्द भव निकट न तिन नर के रह हु जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सैस पनी जय अर्ध सैस पुन तीन कही जय पाद्र सुधी अष्टमी रवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बह भेद कह हम एक न जान्यो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखाने दोहरा सगल

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजी अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तूठा

संत चौर टुलावो शीश निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्यायी तज अभिमान सरणी परो हर गुण निद पाई अब लोकन पुनः पुनः करूं जन का दरसार अमृत बचन मन मह सिंचो।

नानक कौ प्रभ दया दा कर दास चरणी लागौ सूही महल्ला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मह पाऊ राख लेहु।

अमराया गृह अंधकूपाया पावक सगराया कही ओट साधाया नानक हर त्याया।

निमख सिमरत जित छूटै, संतहो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर

नाम जपै उधरै सो कल मह घट घट नानक माझा सूही महला पंजवा जो किछ करै सोई प्रभ मन है ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के

अपनी भगत प्रभ आप कराई, आपे सेवा लाए भरम गया पै मोह बिनासे, मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाता भेटिया।

0: जिष्णु किर हर कृपा तारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा सदका गुरु चरणा विच बैठ के घरां विच बैठ के रब्बी बाणी दे श्री सहज पाठ का लाह प्राप्त कर रही गुरु रूप साध संगत जी आप जी तनता योग हो जो निता प्रति सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी दे नाल जुड़ते हो जो सरबत दे भले वास्ते श्री सहज पाठ हर रोज आप जी अमृत वेले सुबह दे वेले 9:15 तो 10 बजे तक सरवण करते हो सो सतगुरु जी कृपा करन समूह संगत दियां हाजरियां दर प्रवान करन सभना नूं दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन अगाध बोध बाणी दा भाव समूह परिवारां नूं सतगुरु जी बख्शिश करन बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शी योग ने भुला ना चितारनिया प्यार सतपते गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुआओ जो अज साहिब सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह दतार पिता महाराज जी ने जो मीरी पीरी दियां तलवारां बधियां सन मीरी पीरी दिवस सिख इतिहास विच बड़ी वड्डी थां रखदा है जिस अंदर सतगुरु दतार पिता महाराज ने जो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तो लैके पंचम पातशाह तक पीरी की शक्ति बख्शिश की पीरी की दात दी छेवें गुरदेव ने फिर पीरी के नाल मीरी नू जोड़िया सो मीरी पीरी दिवस जो सतगुरां ने श्री अकाल तख्त साहब ते मीरी पीरी दियां तलवारां बधियां सन उस दिवस नू बड़े माण नाल बड़े गौरव नाल याद किया जाता है। सो सतगुरु दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी के उस पावन पवित्र दिहाड़े नू याद करदियां अज सिख गुरद्वारा सैनहोजे वालों भी जो विशेष कीर्तन हाजरी है उस सत्कारयोग भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी अते उन्हां दा जथा आप जी नू सतगुरां दी अमृत बाणी दे कीर्तन नाल जोड़ेगा। आप जिया ने प्यार सहित सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी दे कीर्तन सरवण करने हां जी। भुलां चुकां दी खिमा समूह संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ।

उस सेवक को कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक के सिर पर सतगुरु का हाथ होता है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करते हैं, सब सहे ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे है थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुर की सब के ऊपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है, पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुर की प्रसन्नता है, सतगुर जी तुट के उसनों सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्य रास करते हैं। यही नहीं, ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। उस अपने सेवक दे ये लोग ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुरु दी नजर खड़ेरी है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना से सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारियो, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई पटकना है, कोई किते पटक रहा है, कोई किते पटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ईमान सुजन्म दुलंभ है, होए ना बार है बार। ईमान सुजन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारे, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए, उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होने वास्ते इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उस नूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ताकि असी रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वो भगती करके तेरे असी तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होण वास्ते तन नहीं है। उहनां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है, हाथी दे कोल बड़ा ताकतवर शरीर है, शेर दे कोल पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ए मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इस नूं मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इत्थे इस नूं सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहिंदे ने कि ए जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटके से आए जाए दुख पाएगा। जदों ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आन जाण दा गेट बन जाएगा, फिर की होवेगा। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियों दियां, पशुओं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेनू ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे परिया। जिहड़ी तू आवागौण दी भटकना शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसी दे दर ते, कदी किसी दे दर ते, तू उस परमेश्वर दा हो जाए। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, जदों तू परमेश्वर दा बन जाएगा सारा संसार तेरा बन जाएगा।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਕਥਾ ਸਰਨੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,

हर बाणा गुरु पाया, मेरा हर प्रभु कैसा वास जियो, भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभु बाणा बावे, आनंद अनहद वजे वाजे, हर आप गल मेलावे, तुसी पुत भाई।

पंडित दियो हर हर कथा पढ़े पुराण दियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबान हर रंग रूपावे पिंड पत्तल क्रिया दीवा फूल हर तर पावे हर बाणा हर पाया सतगुरु बोलिया।

Apasarihi. काका सिमरनजोत सिंह जी जिन्हों बड़े प्यार दे नाल आपा सारे रोबर कहिंदे सी, सपुत्र सरदार रूप सिंह जी, बीबी नरेंद्र कौर जी, तिन्हां दे होनहार सपुत्र जिस तरह आप जी ने पावन पवित्र वचन शेखपुर जी के सरवण किए हैं, हरीदा दरिया वे कलन बगला बैठा केल करे केल करते हैं, जनों चिंते बाज पे तिसरब दे केला सरिया, जो मन चितना छेते सन सो गाले रब किया। सतगुरा दे इक

0: दुखी सदा लेते संस्था दुखी किले का ही लेते संस्था दुखी महाअनुकारी संस्था दुखी सदा बेकारी
1: संस्था
0: दुखी को नहीं खाओ नही संस्था रहता गए मनाए
1: संस्था
0: दुखी को जान कर मजिया संस्था दुखी उजड़ पड़े दुखी की लड़की नहाए अपने बीज आपसे ही खाए संस्था दुखी योग लाए जो जल बिहुल मछली कर फड़ाए संस्था दुखी छिका अकेला जो बॉट खेत महेश भेला का तो ही गया नारे जोकर को हवा तो ही सेवा संस्था दुखी सदा से खाइए संस्था दुखी ने मरा ना दिवाइया संस्था दुख ने जैसा कोई जैसा पावा तैसा कोई हो सबका टीके को करना